केवेनष्टेयता तवा छोता सोवाने हकेवेनष्टेयता नएन्यता सोवाने आ याय आ याय आ ए मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्या